0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क।

वो ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नताइज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 03459232860, 03005858481।

0: अवहाल बाजार के तासोले ताहिर मेडिकल स्टोर वाला सर मुंडा की वही जान जन स्टोर पाक अफगान बिखरे वाला सर नसी मेडिकल स्टोर वाला सर मैदान के तासोले असर सुपर स्टोर मेन बाजार औकुंबर रोड लाल किला के खा थाना मलखंड की पुआ जन ऊंच बाजार के सलीम खान कॉस्मेटिक दरोड़ा किस्म का वास्तु खोरी ग्रीन पैलेस फार्मेसी वाला सरा कश्मीर एंड स्वीट एंड बेकर्स वाला सरा और आबाद के तासुल अनान हाई फरमाल वाला सर जमंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स में मिलावे दिले छी जी जमंग आवास के दावा की अपर दीर की सुकुरी वहीद गुल कॉस्मेटिक्स वाला सर अनवर शाह ड्राई फ्रूट वाला सर कैसर रहमान कॉस्मेटिक्स वाला सर बेशाम की जमंग आवास सुकुरी नियमत कॉस्मेटिक अलूज बाजार बेशाम शाह सुपर स्टोर मेन बाजार बेशाम शाहजी सुपर मार्ट मेन बाजार बेशाम शाह फैसल होलसेल केमिस्ट वाला सर या कॉस्मेटिक दुकान शमसुल हक मार्केट मेन बाजार बेशाम जी कोटकई के गुल अकबर लाला सर पकूर की करोड़ा के शायान कॉस्मेटिक उमर अली कॉस्मेटिक शाहपुर की इख्तियार शॉपिंग सेंटर वाला सर अले की शम्स करियाना स्टोर पेराडाइज खुलता बिल्कुल मकाम और मौलाना अब्दुल्ला गौरी सिब सर जी और सजादुल्ला कॉस्मेटिक राशंग गर्ल स्कूल के सामने लुई किली की जमीन तो आसमानी प्रोडक्ट्स में लावेदले शिखान मुकदर खान कॉस्मेटिक कोरमंगो की इरफान एंड मोहम्मद नबी बाबू बाजार या बाबू मार्केट डेरू बाजार की जमीन आसमानी प्रोडक्ट्स का इंतजार दिखा दी हम उनसे टाइम मुख्तसर एड्रेस खड़ी रिपाती थी टाइम मुख्तसर दे इंशाल्लाह कभी वफा सागन वफा होगा जुन वफा होगा सबाब और जोन दी बारिश سبا وی خص کلی پروگرام سره ساتو خدمت کی حاضری کو ترقی دوم پر خپل رو ڈاکٹر اسرار جان لای اجازه تور گئی دلوی الله پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
2: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर।
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क,
5: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसाई।
3: जरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम पकम के चिबस्तासो द हर ना इलाज मरज इलाज डेर पतसल्ले सरा कवलेशी यानी शुगर ब्लड प्रेशर खूनी औबादी बवासीर अरकुल निसा बे औलादी द नारीनाओ जनानाओ पटे मसले दमला दर्द दमला परक औ हडू की वहर औड़े दल द जुनो रगुना बंदे दल द मेदे मसले फालज जड़े विख्तगोर से दल या प मख बांधे विख्तरा खतल نور یوشمیر مسئلے ڈیٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے ڈیر پتہ سلئی سرا قولی شی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلے بھی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسنو کمزورتیا

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: तासो औरे रेडियो अमन द अमन आवाज, तासो आवाज।